Papus, papus, papus, papus.

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: खुमोस आवर उदास तुम क्या गए के रूठ गए दिन बाहर।
1: Subscribe to SBS South Asian on YouTube to see our latest content.

0: SBS Saltation.
1: Hey, yeah, Akash John Doe on the beat.
2: Dele.

0: Your weekend playlist.
1: This is SBS South Asian.
2: अरे भाई, मन्ने एक बात बता। थम पंजाबी लोग दारू कित कित पी।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 7 जून 2026 की रविवार वाली शाम और आप सभी को वैशाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज चलाएंगे मोहम्मद रफी के गीतों की रेलगाड़ी और इसी कड़ी में आप मुझे बताएंगे कि ये जो मोहम्मद रफी का गाना है ये किस एक्टर पर फिल्माया गया है.

नंबर आप जानते हैं 0439-799-767. सही जवाब भेज दीजिए जल्दी जल्दी. लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले सुनेंगे आज के संक्षिप्त समाचार. इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में घर से व्यवसाय शुरू करने पर, और फिर समझेंगे कि कैसे चुने जाते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नॉमिनी, और आप किस तरह से एक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल के लिए किसी का नाम भेज सकते हैं. इसके बाद लाएंगे फिल्मी डायरी में शाहिद कपूर के जीवन पर चर्चा, और अंत में आपकी पसंद के गीत. आज चला रहे हैं मोहम्मद रफी के गीतों की रेलगाड़ी, जिस कड़ी में मैंने आपसे पूछा है कि ये जो गीत है वो कौन से एक्टर पर फिल्माया गया है.

0439799767 हमारा नंबर है, जल्दी जल्दी भेज दीजिए संदेश। तब तक आइए सुनते हैं आज के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ ऑकस समझौता पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि परमाणु पनडुब्बी सौदे को लेकर एक बार फिर आलोचना तेज हो गई है। समझौते में हुए ताजा बदलाव के तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से 3 सेकेंड हैंड वर्जीनिया श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी। मूल योजना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को 2 पुरानी और 1 नई सबमरीन मिलनी थी। इस बदलाव के बाद मल्टीबिलियन डॉलर के इस रक्षा समझौते पर फिर सवाल उठने लगे हैं। ग्रीन्स पार्टी के रक्षा प्रवक्ता डेविड शूब्रिज ने ABC के इनसाइडर्स कार्यक्रम में कहा कि इस समय ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे बड़ा रणनीतिक जोखिम अपनी रक्षा नीति पर वॉशिंगटन के प्रभाव के कारण संप्रभुता कमजोर होने का है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑकस के कारण ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना के बीच किसी संभावित संघर्ष में खिंच सकता है और सवाल उठाया कि देश की समुद्री सुरक्षा के लिए परमाणु पनडुब्बियों की वास्तव में कितनी आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर मेलबर्न के व्यस्त फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन पर शनिवार रात किशोरों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कई युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान कुछ किशोरों के पास मशेटे भी थे। घटना के दौरान स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। सूचना मिलने पर प्रोटेक्टिव सर्विसेज ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और एक ट्रेन में सवार 4 किशोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भी मशेटे बरामद किए गए। इसके अलावा स्टेशन क्षेत्र के पास 2 अन्य किशोरों को भी हिरासत में लिया गया। झड़प में घायल हुए 17 वर्षीय एक किशोर को हाथ में गहरा कट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ स्पीयर फिशिंग कर रहे एक व्यक्ति की शार्क के हमले में मृत्यु हो गई। इस 35 वर्षीय व्यक्ति पर शनिवार सुबह राज्य के दक्षिण पश्चिम में एल्बनी के पास स्थित माइकल मास द्वीप के तट से दूर कथित तौर पर 4.5 मीटर लंबी शार्क ने हमला किया। पुलिस के अनुसार व्यक्ति को नाव के जरिए किनारे लाया गया जहाँ पैरामेडिक्स पहले से मौजूद थे, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये घटना पिछले महीने हुई एक अन्य घातक शार्क हमले के बाद सामने आई है। मई में पर्थ के पास रॉटनेस्ट द्वीप के निकट हॉर्स शू रीफ में गोताखोरी के दौरान 2 बच्चों के पिता पर भी शार्क ने हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें पानी से निकालकर नाव के जरिए जेटी तक लाया गया था, लेकिन पैरामेडिक्स उन्हें भी नहीं बचा सके थे। वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के दूरदराज समुदाय पापुलोंग खुज्जा में डीजल की कीमत $4.28 प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। इस समुदाय में आय के सीमित स्रोतों में एक स्थानीय गैर लाभकारी कला केंद्र है, लेकिन अबोरिजिनल कला मेलों में अपनी कलाकृतियां बेचने के लिए कलाकारों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगस्त में होने वाले डार्विन अबोरिजिनल आर्ट फेयर तक पहुंचने के लिए करीब 2,500 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। ऐसे में 4-पहिया वाहन में एक बार ईंधन भरवाने का खर्च लगभग $350 तक पहुंच जाता है। ब्लैकस्टोन के नाम से भी जाने जाने वाला पापुलोंग-खुज्जा एलिस स्प्रिंग्स से लगभग 900 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ से पक्की सड़क तक पहुंचने में करीब 5 घंटे लगते हैं, फिर एलिस स्प्रिंग्स तक 5 घंटे और वहां से डार्विन तक लगभग 15 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के ओहायो राज्य के टोलेडो शहर में एक सामुदायिक उत्सव के पास हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। इस घटना में कम से कम 12 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टोलेडो पुलिस के उपप्रमुख जो हेफनन का कहना है कि शुरुआती जांच से लगता है कि कम से कम 2 लोगों ने गोलीबारी की। उनका यह भी कहना है कि संभवतः ये दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे, लेकिन गोलीबारी की चपेट में आकर 12 लोग घायल हो गए। पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और जांच जारी है। अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच फिलहाल तेजी से आगे बढ़ रही है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में रसोई गैस फिर महंगी हुई है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें 29 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज कर चुकी हैं। नई दरें 7 जून से लागू होंगी। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। ये पिछले 3 महीनों में दूसरी बार की बढ़ोतरी है। इससे पहले मार्च में सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति
आपूर्ति में बाधाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में तेजी आई, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। तेल कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत और नुकसान को कम करने के लिए कीमतों में यह बढ़ोतरी आवश्यक थी, हालांकि इससे आम परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने की आशंका है। इसी के साथ 7 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद अब चर्चा करेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में घर से व्यवसाय शुरू करने के क्या है नियम और आप किस तरीके से आसानी से घर से एक काम शुरू कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन का यह अंश रहेगा। इसी के साथ आज मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल भी था और वो ये था कि मोहम्मद रफी का ये जो गीत है वो किस एक्टर पर फिल्माया हुआ है। आइए गीत सुनते हैं।

आप मुझे अपने जवाब भेज सकते हैं 04397997667 पर. और जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, आइए समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गृह उद्योग कैसे शुरू किया जा सकता है. घर से चलाया जाने वाला व्यवसाय कई लोगों के लिए एक आकर्षक विचार हो सकता है. ये लागत कम करता है, अपने समय पर अपने अनुसार काम करने की आज़ादी देता है और कई तरह के पेशों के लिए उपयुक्त तो होता है, सिर्फ दफ्तर से जुड़े कामों के लिए नहीं. इसके कुछ उदाहरणों में फिटनेस और वेलनेस, सौंदर्य सेवाएं, खान पान या पेशेवर चाइल्ड केयर शामिल हैं. लेकिन हर व्यवसाय की तरह इसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस एपिसोड में हम गृह उद्योग शुरू करते समय ध्यान रखने योग्य बुनियादी नियमों और अहम कदमों को सरलता से समझा रहे हैं. चाहे व्यवसाय घर से चलाया जाए या कहीं और से, आमतौर पर इसे एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे

0: कमिश्नर एलन बताती हैं।
1: So to start a business, even if it's from home, you'll need a tax file number, TFN, and you might also need an Australian business number. Both are free and you can apply online. Depending on how much money you make, the size of your small business, and if you have employees, you may also need to register for other ATO obligations, such as goods and services tax, GST, pay-as-you-go withholding, and fringe benefits tax.
0: सबसे पहले आपको अपने व्यवसाय की इकाई का प्रकार चुनना होता है। जिस व्यावसायिक ढांचे के रूप में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वे इस बात को प्रभावित करता है कि आप पर टैक्स कैसे लगेगा, आपको किस स्तर का कानूनी जोखिम होगा और क्या उस राज्य में अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी जहां आप काम कर रहे हैं। स्प्रिंट लॉ छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए एक ऑनलाइन कानूनी सेवा प्रदाता है। इसके सह संस्थापक एलेक्स सोलो कहते हैं कि घर से व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए सबसे आम ढांचा कंपनी नहीं वरन एकमात्र स्वामित्व यानी प्रोप्राइटरीशिप है, जिसे सोल ट्रेडर भी कहा जाता है।
2: The majority of people running sort of one person work from home businesses are set up as a sole trader, which is the cheapest, quickest option for a one person business in Australia. You can do it yourself online.
0: लेकिन दोनों विकल्पों sole trader और company के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं।
2: A company costs more. It can cost, you know, at least $600 a year to set up. There's ongoing fees, additional tax obligations. So it's more expensive. But again, it can suit a one-person business or a few-person business really well because it provides a lot of risk protection. If things go wrong in the business, it really is separated from your personal life, your home assets. It's all limited to the company, if that makes sense. So it can be a better idea, but still, given the cost, the most common we see is that sole trader model for people setting up the sort of work-from-home business.
0: आपके उद्योग के आधार पर आपको घर से व्यवसाय चलाने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है, खास तौर पर अपने स्थानीय काउंसिल से। जब ग्राहक आपके घर पर आते हैं, जैसे कि इन होम मसाज थेरेपी, हेयर और नेल सैलून या फिर फिटनेस और योगा स्टूडियो, तो काउंसिल की मंजूरी आमतौर पर जरूरी होती है। आप अगर किसी विशेष उत्पाद के साथ कहीं काम नहीं कर रहे हैं या थोक स्तर पर व्यवसाय नहीं कर रहे हों, तो ज्यादातर खाद्य संबंधित व्यवसायों को राज्य की फूड अथॉरिटी के बजाय अपने स्थानीय काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्योंकि अक्सर स्थानीय योजना नियम लागू होते हैं। एंड्रू डेविस न्यू साउथ वेल्स फूड अथॉरिटी के कार्यवाहक CEO हैं। वे कहते हैं कि काउंसिल की मंजूरी मिलने पर अधिकांश खाद्य व्यवसाय घर से संचालित किए जा सकते हैं।
3: And that could include mobile food premises, so food trucks, for example, could be caterers, people who make food and then they take it to functions and events. You can even get manufacturers that operate from home as well, and also retail where food is made and sold directly to the end consumer.
0: चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी हों और चाहे आपका व्यवसाय घर से हो या नहीं, एक खाद्य व्यवसाय मालिक के रूप में आपको फूड स्टैंडर्ड्स कोड का पालन करना अनिवार्य होगा। डेविस कुछ उदाहरण देते हैं कि ये कोड खाद्य विक्रेताओं के लिए किन बातों को कवर करता है।
3: The food safety practices that need to be met and also any general requirements in relation to premises. So we're talking about the kitchen in the home, for example, that would be the premises. But also the equipment, if products are being made and labeling is required, those labeling requirements are also in there.
0: प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक फैमिली डे केयर सेवा मॉडल के तहत घर से काम कर सकते हैं, जिसे आंशिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त पोषित भी किया जाता है। आमतौर पर एक फैमिली डे केयर शिक्षक सोल ट्रेडर के रूप में पंजीकृत होता है और किसी मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध के तहत काम करता है। ये सेवाएं राष्ट्रीय कानून के तहत संचालित होती हैं और इन्हें फेडरल सरकार के नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के आधार पर आंका जाता है। प्रमुख संस्था फैमिली डे केयर ऑस्ट्रेलिया के मुख्य सचिव एंड्रू पैटर्सन इस क्षेत्र से जुड़ी बड़ी आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हैं।
4: You need to have a Certificate 3 qualification in early childhood education and care. There are a range of background checks, like working with children checks, police checks and the like, some first aid and safety qualification requirements. The premises needs to be assessed as suitable. Once you get sort of through all those preliminary requirements, it's then the point at which you would register with a family daycare approved service.
0: मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता शिक्षक को सहायता और निगरानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है और ये सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य होता है कि संबंधित कानूनों और विनियमों, जिसमें स्थानीय सरकारी मंजूरी भी शामिल है, जो स्थान के अनुसार भिन्न हो

0: सकती हैं का पालन किया जा रहा है। पैटरसन आगे बताते हैं कि किसी भी गृह उद्योग को शुरू करने के लिए जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, जैसे टैक्स पंजीकरण, उपयुक्त बीमा लेना, वे सब यहां भी लागू होती हैं।
1: The misconception perhaps sometimes about family daycare is that it's a babysitting or a childminding service. It's important to come into family daycare sector with an understanding of the fact that you are an early childhood education and care professional, but you're also running a business. And you're working in an environment that is highly regulated, highly professional.
0: अगर आप पहली बार कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो विशेषज्ञ से सहायता लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अनुभव कुछ भी हो, ये जरूरी है कि आप सलाह लेने और किसी भी उपलब्ध सरकारी सब्सिडी वाली सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने राज्य या क्षेत्र की स्मॉल बिजनेस सरकारी एजेंसी से संपर्क करें। उदाहरण के तौर पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्मॉल बिजनेस के लिए राज्य एजेंसी वर्कशॉप्स, परामर्श सेवाएं और ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराती है, जिनमें एक बिजनेस लाइसेंस फाइंडर शामिल है जो आपको विभिन्न उद्योगों से जुड़े नियमों और लाइसेंस की जानकारी देता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट कोऑपरेशन के सीनियर बिजनेस एडवाइजर क्रिस ओहायर नए व्यवसाय मालिकों के लिए एक अहम सुझाव देते हैं।
2: I would always encourage people who are starting a business to build some financial management and some basic legal framework understanding skills. Because in the end, even if you go to a lawyer or an accountant and they recommend something to you, as a business owner, it is ultimately your decision. It's not theirs. They give you their advice.
0: Chris O'Hire बताते हैं कि अगर आप किराए के घर में रहते हुए गृह उद्योग शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मकान मालिक से अनुमति लेना आवश्यक है।
2: For anyone who's renting their house, not just local council, but you need to be speaking to your landlord or your property manager early in the piece because they may choose not to allow you to do that. And it would be, I would imagine, quite a horrifying experience to start a business up and have lots of excitement and then have your residential lease cancelled because you've broken your lease.
0: Australia Explained के इस अंश को आपके लिए प्रस्तुत किया है SBS News से Zoe Thomadou और SBS Hindi से Vrishali Jain ने। और इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार चर्चा करेंगे कि भाई OAM यानी मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए किस तरीके से नामांकन किए जाते हैं, क्या है ये प्रक्रिया, और चर्चा करेंगे कि आज OAM के ऊपर बातचीत क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारी चर्चाएं होने वाली हैं। बने रहिए SBS हिंदी पर वृशाली के साथ। आज चलाएंगे मोहम्मद रफ़ी के गीतों की रेलगाड़ी। तो अगर कोई गीत उनका सुनना चाहते हैं तो मुझे बता भी सकते हैं इसी नंबर पर। आपके संदेशों के इंतज़ार में हूँ। बस एक छोटा सा अंतराल, फिर हाजिर होती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। कहाँ, अभी तो बताया SBS हिंदी पर।
3: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
4: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
5: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
6: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। Alexa, Google Home या Apple Smart Speaker के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
7: SBS Audio.
4: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
8: यही चाहता था यार. चुनते हैं हालमा.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
12: Far from the partisan politics.
4: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
7: sbs.com.au/audio.
0: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली जैन को और आज मेरी और आपके बीच की चर्चा में जो सवाल था वो ये था कि भाई ये जो गीत है वो मोहम्मद रफ़ी साहब का है, ये तो खैर कोई पहचानने की बात ही नहीं है, लेकिन ये फिल्माया किस पे गया है? और आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी मुझे बोल दिया इतने आसान सवाल मत पूछा करो वृषाली, लेकिन कभी कभी आसान सवाल पूछने चाहिए भाई, संडे है, अच्छे अच्छे सवाल पूछने चाहिए. तो ये आप मुझे बताइए कि इस पर एक्टर कौन है, ये कौन से एक्टर पर फिल्माया गया गीत है?

0: और मेरे पास सही जवाब पता है आपको शो शुरू होने के एक मिनट बाद से आ गए थे। और रवनीत जी मेलबर्न से सही जवाब भेज चुकी हैं, सुरेंद्र चावला जी क्रैनबर्न से, चेतन शाह जी ने तो बोल दिया व्हाट एन इजी पहेली। तो जी आसान सवाल, संडे है ना, आसान सवाल पूछते हम लोग। और शिखा नीश त्विशा शाह उन्होंने भी सही जवाब भेजा है, कुमार जी ने भी सही जवाब भेजा है, राजेंद्र वोरा जी ने भी सही जवाब भेजा है। बंधु आपने नाम नहीं लिखा है लेकिन आपने भी सही जवाब भेजा है। और राजेंद्र वोरा जी ने मुझे ऐसा भी कहा है कि मैं उनको ये पूरा गाना सुनाऊं आज के शो में, जो मैं पक्की बात सुनाऊंगी। और कुमार जी का ऐसा कहना है कि उन्हें चौदहवीं का चांद भी बहुत पसंद है, मैं वो भी आपके लिए लेकर के आऊँगी। और क्लाइड से ब्रजेश परिवार के साथ आज हाजिरी लगा रहे हैं SBS हिंदी पर। जय श्री कृष्ण टू द एंटायर टीम ऑफ SBS, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत दिन से आपसे मेरी वार्ता आप हुई नहीं है ब्रजेश जी। तो खैर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और क्या आ रहा है? आ रहा है किंग्स बर्थडे। किंग्स बर्थडे पर क्या होता है? मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सम्मान होते हैं, चार प्रकार के जो सम्मान होते हैं, उनकी घोषणा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के ये नागरिक सम्मान क्यों ज़रूरी हैं और कैसे आप अपने आसपास के किसी विलक्षण इंसान को या किसी अत्यधिक समर्पित इंसान को ये सम्मान दिलवाने में मदद कर सकते हैं, उसका ज़रिया बन सकते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। प्रासंगिक है क्योंकि किंग्स बर्थडे है। हम आपको आने वाले हफ्ते में बहुत सारे ऐसे ही OAM रिसिपियंट से मिलवाएंगे जो समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ये उससे पहले वाली बात है कि जानना ज़रूरी है कि OAM की जो पूरी प्रक्रिया है, किसी को ये नागरिक सम्मान मिलने की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो आइए मैं और आप मिलकर के इसको सुनते हैं और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आज के क्विज का जवाब। 04397997 हमारा नंबर है।
1: क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने समुदाय में असाधारण योगदान दिया हो? ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी पृष्ठभूमि से या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत। आप उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नामांकित करके उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने में मदद कर सकते हैं। स्वागत है ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं कि हमारे समुदाय के साधारण सदस्यों की असाधारण उपलब्धियों का जश्न क्यों मनाना ज़रूरी है। और जितना अधिक हम अपने समुदाय में इन असाधारण सदस्यों की पहचान और सराहना करेंगे, उतना ही ऑस्ट्रेलियाई ऑनर्स की जो सूची है उसमें देश की सच्ची विविधता दर्शाई जाएगी। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमारे राष्ट्रीय सम्मान प्रणाली का हिस्सा है। ये उन ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मान्यता देने और उनका सम्मान करने का सर्वोच्च तरीका है जो अपने दायित्वों से कहीं अधिक जाकर कार्य करते हैं और समुदाय में शानदार योगदान करते हैं। इस पुरस्कार के लिए नामांकनों पर विचार काउंसिल फॉर द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया करती है, जो एक स्वतंत्र निकाय है और गवर्नर जनरल को अपनी सिफारिशें भेजती है। रॉब आइलिंग गवर्नर जनरल के कार्यालय में निदेशक हैं। वे कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए है और यही कारण है कि ये प्रक्रिया वास्तव में समुदाय के भीतर से किए गए नामांकन से शुरू होती है।
2: Some recipients are very well known, but the vast majority are unsung heroes. The sort of people that we all know in the community, who give tirelessly of themselves, work selflessly, and really make a difference. Some are volunteers, some achieve things in the community sector, in industry, in sports, in the arts. There's really no limit to who can be recognised, but everyone that is recognised has one thing in common, and that's that somebody else has taken the time to nominate them for recognition.
1: जब आप किसी को पुरस्कार के लिए नामांकित करते हैं, तो काउंसिल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस प्रक्रिया का प्रबंधन करती है और ये तय करती है कि किसे मान्यता दी जानी चाहिए और किस स्तर पर। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के चार स्तर होते हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर यानी AC, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर यानी AO, मेंबर ऑफ द ऑर्डर यानी AM और मेडल ऑफ द ऑर्डर यानी OAM। इनमें से सबसे प्रचलित पुरस्कार OAM है। किसी को नामांकित करने के लिए समय निकालने वाले व्यक्तियों में से एक हैं माइकल स्मिथ।
3: The particular individual who I was part of nominating, to me, had just been doing an outstanding service to the community over a period of time, and I just felt that it was something that ought to be recognised. The sector that this person had been working in, and working in voluntarily, I should add, I had not seen recognised in previous awards.
1: एक बार नामांकन जमा हो जाने के बाद गवर्नर जनरल के कार्यालय से एक शोधकर्ता प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन करते हैं। नामांकन फॉर्म में नामांकक उन संदर्भ दाताओं की सूची देते हैं जो नामांकित व्यक्ति और उनकी सेवाओं पर टिप्पणी कर सकते हैं। शोधकर्ता इसके बाद अतिरिक्त संदर्भ दाताओं से संपर्क करते हैं जो अपनी राय और दृष्टिकोण साझा करते हैं। आइलिंग बताते हैं कि ये कठोर प्रक्रिया है जिसमें लगभग 18 महीने से 2 साल तक का समय लग जाता है।
2: So the council really relies on having a very in-depth, thorough assessment of a nominee's service, what they've done, what that impact has been. And to get that picture, there is a comprehensive research process. Once a nomination proceeds to council, they consider it very carefully. They make recommendations to the Governor-General, who is ultimately the one who signs off on those recommendations. And then announcements are made twice a year in January and June. So what that means is the process does take some time.
1: पुरस्कार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गोपनीयता है। शुरुआत से लेकर अंत तक इस प्रक्रिया के हर पहलू को गोपनीय रखा जाता है, यहाँ तक कि प्राप्तकर्ताओं के नाम भी। टिम थॉर्प को सामुदायिक रेडियो में उनकी सेवा के लिए OAM प्रदान किया गया था।
4: Around about October, I got an email telling me that I was being considered for this particular award, and I was to either accept it or write a letter to not accept it. So I filled in the form and I was sworn to secrecy. They said this is not to be spoken about to anybody. Then in December, I received another email saying my award had been approved by the Governor General and once again to treat the matter with strict confidentiality.
1: Hilkot Özgün को भी तुर्की समुदाय में उनकी सेवाओं के लिए OAM प्रदान किया गया। उन्हें भी अपने नामांकन के बारे में बात ना करने के लिए कहा गया था।
5: It was a big surprise to me. I received an email from the Order of Australia Medal Committee a week before their announcement, and they asked me to keep it a secret. I have worked on many different kind of confidential projects at my workplace, so it was easy for me to keep this secret as well.
1: जब आप किसी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नामांकित करते हैं तो आपसे ये भी अनुरोध किया जाता है कि आप उस व्यक्ति से नामांकन को गोपनीय रखें। इसका उद्देश्य उनकी अपेक्षाएं ना बढ़ाना है, क्योंकि नामांकन हमेशा सफल नहीं होते। आइलिंग बताते हैं कि संदर्भ दाता को भी गोपनीयता बनाए रखनी होती है।
2: In that independent research process, the Secretariat and the Council of the Order of Australia really rely on the candour and ability of referees to provide frank and honest feedback about the person that's been nominated. Confidentiality is taken very, very seriously so that the person that is being nominated will never know what a referee has said about them. That confidentiality and that frank advice from referees is a critical part of the system.
1: इस प्रक्रिया के चारों ओर इतनी अधिक गोपनीयता होने के कारण प्राप्तकर्ता को ये तब तक पता नहीं चलता कि उन्हें नामांकित भी किया गया है, जब तक कि घोषणा से ठीक पहले बताया न जाए। टिम थॉर्प न केवल अपने नामांकन से चकित थे, बल्कि इस बात से भी कि उनके पुरस्कार को उनके साथियों द्वारा कितना सकारात्मक दृष्टि से देखा गया।
4: The common thing with anybody who gets these awards is they think, am I really worthy of this? But I think that's up to others to judge. Rather than me, and I appreciate the fact that they thought I was worthy of an award, but obviously you're having an effect on certain people's lives, and that's nice to know. That's something that all of us need from time to time. We need that sort of affirmation. We need that encouragement. We need to know what we've been doing is okay. It's worthwhile.
1: आइलिंग बताते हैं कि प्राप्तकर्ताओं को सुनहरे रंग का एक लेपल पिन और एक पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें अपने राज्य की राजधानी स्थित गवर्नमेंट हाउस में आयोजित औपचारिक समारोह में भी आमंत्रित किया जाता है।
2: So those investiture ceremonies are just really beautiful, joyous occasions where the recipients, surrounded by their families and friends, but also other recipients, really get to bask in the admiration, recognition and thanks of their fellow Australians. They're just a beautiful moment in time where these people who are almost humble by default are celebrated, are held up as just the fantastic, wonderful servants of Australia that they are.
1: तो फिर ऐसी क्या बात है जो किसी व्यक्ति को अपने परिचित को नामांकित करने के लिए प्रेरित करती है? माइकल स्मिथ कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने में बेहद संतोष मिलता है जो बदलाव लाते हैं और जो जरूरी नहीं कि हाई फ्लायर्स हों.
3: They're not the people that you're going to read about in the newspapers. They are everyday people. They are your neighbours. They are the people you work with. And what they do does make a difference and it is recognised.
1: Order of Australia प्राप्त करना न केवल लोगों को अपनी समुदाय में और अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है बल्कि ये प्राप्तकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करता है कि वे अन्य ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो समान सम्मान के योग्य हैं. ऑस्गुन यही बात कहती हैं.
5: I have nominated many people from the Turkish community and also from the other communities living in Australia for the different kind of awards. I have also provided references for the Order of Australia medal as well.
1: यदि आप किसी को नामांकित करने में रुचि रखते हैं तो दिशा निर्देश देखने के लिए गवर्नर जनरल की वेबसाइट gg.gov.au पर जाएं. आइलिंग कहते हैं कि नामांकन फॉर्म का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, कार्यालय आपकी मदद करने के लिए तत्पर है.
2: Don't let fear of the form or uncertainty prevent you from nominating somebody for recognition in the Order of Australia. We all want the Order of Australia to reflect the true diversity and strength of our country, and the only way for that to happen is for all of us, all Australians, to take an active part in it, to look around their community, identify people that they think are extraordinary and have a great impact, whatever their work is, whatever their background is, and consider nominating them for the Order of Australia.
1: ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के संच को SBS न्यूज से मेलिसा कॉम्पिटोनी और SBS हिंदी से वृषारी जैन ने आपके लिए प्रस्तुत किया. और आपके संदेश लगातार मेरे पास आ रहे हैं. मेरे पास निधि जी ने सिडनी से संदेश भेजा है और आप सब बिना मतलब ये तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोग सही जवाब देते हैं क्योंकि गलत जवाब तो आप लोगों को आते ही नहीं हैं. जफर साहब लिखते हैं कि वृषाली जी दिस सॉन्ग पिक्चराइज. अच्छा, उन्होंने सही जवाब भेजा है. आई ऑल्सो लाइक मोहम्मद रफ़ी का सॉन्ग बहारों फूल बरसाओ. एंड ऑल्सो इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हेन वी expect to get our movie tickets. They will be emailed to you, Zafar Saab. I will get a better clarity on this and will let you know. पर ये आपको ईमेल से प्राप्त होंगे तो जल्द ही प्राप्त हो जाने चाहिए क्योंकि मूवी रिलीज़ के बाद आप उसमें आपको स्पेसिफिक डेट्स लिखी रहेंगी आपके पासेस में जिसमें आप कब जाकर उन्हें देख सकते हैं. तो ये सारे कंडीशंस मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचवा दूँगी जी. तो फिलहाल आपके लिए एक ये गीत और इसके बाद आगे बढ़ाएंगे शो को. इसके बाद लूँगी एक ब्रेक दरअसल और ब्रेक के बाद जाएंगे फिल्मी डायरी पर.

0: SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है, sbs.com.au/guide पर जाएं।
1: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
0: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम, SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
2: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
0: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
3: sbs.com.au/gujarati ने तमारू होम पेज बनाओ। ताजा समाचारों, सांप्रत घटनाओं तथा मनोरंजन माटे sbs.com.au/gujarati नी मुलाकात लो।
4: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
5: और अब आइए कार्यक्रम में SBS हिंदी पर विशाली के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्मी डायरी की, जहां आज चर्चा करेंगे अभिनेता शाहिद कपूर की।
6: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। बॉलीवुड की जिस अभिनेता की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो भले ही स्टार किड रहे हैं, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। शुरुआत में वो फिल्म में बैकग्राउंड डांसर थे। फिल्म रंग दे बसंती में वो आमिर खान की पहली पसंद थे, लेकिन डेट्स न होने पर छोड़ दी थी। फिल्मों में डेब्यू के 16 साल बाद उनके हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार का टैग दिलवा दिया। एक फिल्म के लिए उन्होंने F-16 फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। ये कारनामा करने वाले वो बॉलीवुड के पहले और अब तक के इकलौते एक्टर हैं।

जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की।

0: 25 फरवरी 1981 को जन्मे शाहिद का जन्म दिल्ली में हुआ। वो इतने खूबसूरत पैदा हुए थे कि उनका नाम ही शाहिद यानी सुंदर रख दिया गया। उनका जन्म बॉलीवुड अभिनेता पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के घर में हुआ था। जब शाहिद 3 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद शाहिद अपनी माँ के साथ दिल्ली रहते थे। शाहिद कपूर की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ज्ञान भारती स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन शाहिद ने मुंबई के मीठी बाई कॉलेज से की।
1: मुझे तुम बता दो, कोई तो वजह दो।
0: शाहिद ने 10 साल की उम्र से ही डांस सीखना शुरू कर दिया था। वो स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लेते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने शामक डावर के संस्थान में प्रवेश लिया। यहाँ शाहिद ने न सिर्फ डांस सीखा बल्कि अपने अभिनय करियर की ओर कदम भी बढ़ाए। फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में उनका सफर यहीं से शुरू हुआ। वो दिल तो पागल है और ताल जैसी फिल्मों में सितारों के पीछे डांस करते नजर आए।
1: क्या रोग ये पाला है, मुझे इश्क हुआ है या होने।
0: शाहिद कपूर कई ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आए और कई म्यूजिक वीडियो में भी अभिनय किया। वो कुमार सानू की म्यूजिक वीडियो आंखों में भी दिखे, जो उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ। यहां से निर्माता रमेश तौरानी ने शाहिद को अपनी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया। शाहिद कपूर ने फिल्म इश्क विश्क से साल 2003 में डेब्यू किया। ये फिल्म एक स्लीपर हिट साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।
1: अब

0: दिला।
1: इसके बाद उन्होंने दिल बोले हड़प्पा, चांस पे डांस, पाठशाला, बदमाश कंपनी, मिलेंगे मिलेंगे, मौसम और तेरी मेरी कहानी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। वर्ष 2013 में शाहिद की फटा पोस्टर निकला हीरो और आर राजकुमार फिल्में प्रदर्शित हुईं। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। इसके बाद 2006 में सूरज बड़जात्या की फिल्म विवाह आई, जो बड़ी हिट साबित हुई। वहीं 2007 में फिल्म जब वी मेट को शाहिद की अब तक की यादगार फिल्मों में शुमार किया जा सकता है। शाहिद की वर्ष 2014 में फिल्म हैदर रिलीज हुई। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए शाहिद कपूर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 2009 में फिल्म कमीने में अभिनय के लिए शाहिद को खूब वाहवाही मिली। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू की।

0: साल 2003 से लेकर 2018 के बीच विवाह, जब वी मेट और हैदर जैसी कुछ सफल फिल्में शाहिद की झोली में गिरी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी इमेज को बदल नहीं पा रहे थे। तभी डेब्यू के 16 साल बाद उनके हाथ वो फिल्म लगी जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार का टैग दिलवा दिया और उस फिल्म का नाम था कबीर सिंह। रिलीज के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और ये शाहिद के करियर की इकलौती सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म है। ये शाहिद के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि शाहिद को रातों रात सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म कबीर सिंह के लिए वो संदीप रेड्डी की पहली पसंद नहीं थे। फिल्म कबीर सिंह में वो पहले रणवीर सिंह को कास्ट करना चाहते थे। रणवीर सिंह ने इस ऑफर को खुद के लिए सुटेबल ना बताते हुए रिजेक्ट कर दिया था। इस तरह रणवीर सिंह के एक ना से शाहिद कपूर की किस्मत चमक गई, क्योंकि रणवीर के इनकार करने के बाद ये फिल्म उनकी झोली में आ गई थी।
1: क्यों दूर मैं रहूं? तेरा गुरूर तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला।
0: इस फिल्म के बाद शाहिद कपूर के हाथ एक और अच्छी फिल्म लगी थी जिसका नाम था जर्सी। फिल्म जर्सी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे ही ये फिल्म ओटीटी पर आई तो फिर से शाहिद सोशल मीडिया पर छा गए थे और उसके बाद ओटीटी पर आई उनकी फिल्म ब्लडी डैडी और वेब सीरीज फर्जी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और काफी दिनों तक ये ओटीटी पर टॉप ट्रेंड करती रही थी। नेहा धूपिया के पॉडकास्ट में शाहिद ने खुलासा किया कि साल 2006 में आई आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती में उन्हें काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन डेट्स की वजह से उन्हें इस फिल्म के ऑफर को ठुकराना पड़ा था। बता दें, रंग दे बसंती साल 2006 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।
1: आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
0: शाहिद कपूर उन चंद बॉलीवुड सितारों में शुमार होते हैं जिनके एक्ट्रेसेस के साथ लव अफेयर हमेशा फेल रहे। शाहिद ने अपने पहले म्यूजिक वीडियो आंखों में तेरा ही चेहरा की हीरोइन रिश्ता भट्ट को डेट किया। करीना कपूर के साथ तो उनका बड़ा तगड़ा अफेयर रह चुका है। विद्या बालन के भी साथ रिलेशन में रहे। प्रियंका चोपड़ा भी शाहिद की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, लेकिन शाहिद की तरफ से फुल कमिटमेंट होने के बावजूद इनमें से किसी के साथ भी उनका रिलेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। फाइनली शाहिद ने नॉन फिल्मी गर्ल मीरा राजपूत से शादी कर ली और अब शाहिद दो बच्चों के पिता भी हैं। यानी शाहिद की मैरिड लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है।
1: सुन लिया सनम, तुझको दिल का साथी, चुन लिया मन, चुन लिया मन, चुन लिया सनम।
0: साल 2011 में आई फिल्म मौसम में शाहिद कपूर एक एयरफोर्स पायलट बने थे। शाहिद ने इस फिल्म के लिए बकायदा F-16 वाइपर फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। शाहिद ने इंडियन एयरफोर्स का मिराज जेट भी उड़ाया था। शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 फिल्म कॉकटेल की स्पिरिचुअल सीक्वल है। ये फिल्म 19 जून 2026 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

0: तो मर गया। SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम के आखिरी ब्रेक का, लेकिन जाने से पहले बता दूं कि भाई अभी ना जाओ छोड़कर जो गीत है वो फिल्माया गया है देवानंद और साधना पर। और इसी जवाब के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलाएंगे नॉन स्टॉप गीतों की रेलगाड़ी। बने रहिए SBS हिंदी पर वृषाली के साथ।
2: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ। जुड़े रहना आसान है, सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियाँ SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
3: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
4: इनसाइड SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
3: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
4: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें, ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
1: और SBS हिंदी पर आपका फिर एक बार स्वागत है। SBS हिंदी पर आप सुन रहे हैं वृषाली को, और अब बिना किसी देरी के आपके पसंद के गीतों की रेलगाड़ी आज मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मैं और आप आगे बढ़ कर सकते हैं।

और इसी के साथ वैशाली आज के लिए आपसे ले रही है विदा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना बेहद ध्यान रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

में गाओ है रेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

The Bollywood Session on SBS South Asian.

Yeah.

होता है। तो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

Asian.

0: क्या खुद को खुदा मानते हो? क्या खुद को खुदा मानते हो? हमें मार तो दिया, पर एक शायर को मारने की सजा जानते हो?
1: SBS साउथ एशियन।
2: जी गुरी।

ऐसा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुए, हजार रातों में वह भी एक रात हुए, आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए।

Natural

0: में हार के वो जा रहा है कोई शबगम गुजार। वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए दिन बहार।
1: SBS South Asian.

Drop that.

फकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। अमीरों वाला ख्वाब चाटो इनकी धूल, दिखने में सुंदर ये कांटे वाले फूल।

गरीबों की लगी सेल, गलती है किसकी और बदले में कौन चाहता जेल, पन्ना है चीता या रेरा तो मैं बस एक स्नेल, मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेट फुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल, अकेला ही करूँगा मैं सारा वेट पुल, याद रखना ऑफ द फन एंड ओनली बिग पुल।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।